0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Big cash at Big Ticket.
3: 15 million dirham grand prize.
2: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
3: Plus 5 consolation prizes.
2: Buy now at BigTicket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
2: एसी से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
3: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:10।
1: Bollywood.

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
5: Dabur Pudinhara, just one tiny pearl packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 728 एंड जस्ट 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। मतलब हाँ, 4-5 डिग्री से टेम्परेचर डिप हुआ है कंपेयर टू द पास्ट 3-4 डेज। पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग। ह्यूमिडिटी एट 71%, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 38, लोज ऑफ 34 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:07।
1: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: control.
1: ARV.
0: Wait a minute.
1: ARV.
2: सलाम ले जाता हुआ, उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: It's 8:54 on the clock and time to play the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Like I said, एक कुछ tricky सवाल पूछने का मन तो मेरा कर रहा था, लेकिन in retrospect मुझे लगता नहीं कि इतना tricky होगा, because कौन comedy film का fan नहीं है यार. This is one of my favorite, all-time favorite comedy films from Bollywood. And इतनी पुरानी film भी नहीं है, okay? Clues देना शुरू कर दिया है मैंने. आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी की कौन सी कॉमेडी फिल्म का ये वाला डायलॉग है आपको सुन के मेरे को फिल्म का नाम बताना है. उसके बाद एक और क्लू मैं आपको दूंगा.
2: गर्दन पे क्या हुआ?
3: बेटा हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है.
4: पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है.
0: Yes, I mean it has moments like this galore. So, star cast ek bar phir. There is Ayushman Khurana. There is Rajkumar Rao. Like you've never seen him before. One of his strongest performances. There's Pankaj Tripathi as well. Jo ki gardan pe ye laga kar baithe, unki gardan mud gayi hai. And film ka naam kya hai? Agar aapne mujhe bataya, call karke 800-1062 par. You stand to win 2 open movie tickets. The biggest clue is film ka jo naam hai. Usme ek Indian city और एक मिठाई आती है. ऑलराइट, इंडियन सिटी प्लस एक मिठाई कौन सी फिल्म के नाम में आती है? दैट इज द करेक्ट आंसर. गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, शंकर महादेवन क्लासिक. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
1: नाम है सिड, सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई. एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो बिगिन्स एट 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
8: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
9: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
8: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
9: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
8: चलो चले अलराज.
10: Wow, your hair color looks stunning.
11: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
10: Yeah, right.
11: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
10: Really?
11: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
10: I'm buying it right now.
11: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: इज इट जस्ट मी या आपको भी ऐसा लगता है इस गाने को सुन के कि वो बज नहीं, वो मेरा बॉस मुझे जीने ना दे जीने।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: चलो अब्दुल से पूछते हैं कि उनका बॉस उन्हें जीने देता है कि नहीं देता। अब्दुल वासिल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
2: हाय, गुड मॉर्निंग सेड, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग।
0: आपका बॉस आपको जीने ना दे जीने ना दे, या और डू यू हैव अ गुड बॉस?
2: I have a good boss, fortunately.
0: You have a good boss, that's what you're going to say on a public broadcasting medium like the radio, right? Oh, aapas mein baat karenge, tab shayad kuch aur information mujhe mil jaye Abdul se. But Abdul, what plans for a Friday? The weekend is almost here.
2: Sorry?
0: Weekend is almost here. Kya plan man banaya ki nahi banaya aapne?
2: Yeah, weekend is almost here. But this weekend I'm working on Saturday.
0: Nahi.
2: But filhal Sunday ka kuch plan nahi hai.
0: Keh do ki ye jhoot hai.
2: क्या करें यार, करना पड़ता है।
0: और 28 तारीख का क्या प्लान है, लॉन्ग वीकेंड?
2: 28 तारीख को लॉन्ग वीकेंड है, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, बट वील प्लान सून।
0: अब्दुल, मुझे लगता है कि मुझे आपकी कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। चलो, लास्ट टाइम मैंने आपको एक डायलॉग सुनाया था एक फिल्म का, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी फिल्म्स। और जब कोई मुझे पूछता है ना कि विच इज द लास्ट टाइम जो आपने मतलब पेट पकड़ पकड़ के तुम हंसे थे सिनेमा हॉल में, इट इज दिस पर्टिकुलर फिल्म। चलो सुनते हैं कि बाद में क्या हुआ। पंकज त्रिपाठी के गर्दन में दर्द था, उन्होंने लगाया हुआ था वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं क्या, और सामने बैठे हुए राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना। एंड व्हाट वाज द सुझाव, लेट्स लिसन टू इट टुगेदर। ओके,
3: अरे कुछ नहीं अंकल, रात को दूध में तुक मलंगा मिला के पीजिएगा, सब सटीक हो जाएगा।
4: अरे मलंगा फलंगा से कुछ नहीं होता, लाइए हम ट्यूनिंग कर देते
3: हैं। ना करिए विद्रोही जी।
4: अरे रुके रुके, कुछ नहीं।
5: अरे रहने दीजिए,
3: ट्यूनिंग के चक्कर में इंजन ना बैठ जाए कहीं।
4: कुछ नहीं। अरे रुकिए तो।
5: अरे भैया क्या,
4: अरे पकड़िए, बस बस बस,
6: थोड़ा नाम से बेटा
4: जाओ। एक दो तीन हो गया।
5: पापा आप ठीक है?
6: हाँ हाँ बेटी, घूमे
3: आराम से घूमे।
0: दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस फिल्म्स। ऑलराइट, बताइए अब्दुल, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
2: द करेक्ट आंसर इज बरेली की बर्फी।
0: एब्सोल्युटली करेक्ट,
2: वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स आल्सो।
0: है ना, इट इज वन ऑफ दोस लाफ अ मिनट काइंड ऑफ फिल्म्स। And
2: yes, one of the very few films that I watched in theater, so I remember it very well.
0: और मुझे लगता है कि अब्दुल आप जितनी मेहनत करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, आप वो दिन दूर नहीं है कि पंकज त्रिपाठी बन जाओगे आप, एंड आपको एक विद्रोही जी चाहिएंगे आपकी गर्दन ठीक करने के लिए। थोड़ा कम काम करो, कम मेहनत करो भाई। है ना, चलो कांग्रेचुलेशंस, ये दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट, एंजॉय द वीकेंड।
2: Thank you.
0: बरेली की बर्फी इज द करेक्ट आंसर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस पीपल जिन्होंने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया इन दिस कॉन्टेस्ट। सो मेनी पीपल कॉल्ड इन, बट आई कैन ओनली हैव वन विनर। डोंट वरी, रोज सुबह ये मौका आता है, इट्स कॉल्ड द बिग बॉलीवुड क्विज, जिसमें आपके पास मौका टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स। कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, अभी तक न्यूज वही है कि टॉक्सिक जिस फिल्म का गाना है तबाही, इट्स कमिंग आउट ऑन द 26th, यानी कि नेक्स्ट वीकेंड। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, गुड मॉर्निंग।

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाह

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Schools starting soon and we need a car.
4: Books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back to school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1099 dirhams per month flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
3: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1099 dirhams per month flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
5: Fasten your seat belts, kyunki don ko pakadna mushkil hi nahi namumkin hai. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Danu Properties. Title sponsor, Papa John's.

0: है सीजन तो छुट्टी तो पे तो जाना है एंड छुट्टी हम लोग जा रहे हैं द बिग चेक इन का लेटेस्ट सीजन इज हियर
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: लेकिन बहुत सारे गेसेस लोग कर रहे हैं गेटिंग लॉट्स ऑफ करेक्ट आंसर्स लॉट्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स एज वेल कि कहां पे द डेस्टिनेशन इज अ सस्पेंस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर यू। लेकिन योर ड्रीम हॉलिडे इज कमिंग वेरी वेरी सून टू बिग 106.2 द बिग चेक इन प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यू प्रॉपर्टीज टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड एंड शराफ डीजी कमिंग सून ओनली ऑन बिग 106.2। एक छोटा सा हिंट अगर आपको चाहिए यू माइट वांट टू स्टार्ट सेइंग गुटन टाग एंड व्हिच इज दैट वन कंट्री जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती है व्हेन यू थिंक ऑफ वर्ल्ड फेमस लग्जरी कार्स एंड हाई स्पीड हाईवेज व्हेन यू से हाई स्पीड हाईवेज एंड वर्ल्ड फेमस लग्जरी कार्स व्हाट्स द वन कंट्री दैट कम्स फर्स्ट टू योर माइंड। Send me a WhatsApp and tukke maro. Guesses apne bhejiye 054-309-1062. That's the WhatsApp number 054-309-1062. More details coming very soon about the big check-in.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
1: Big cash and big ticket.
2: 15 million dirham grand prize.
1: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
2: Plus 5 consolation prizes.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Listen to her every day.
4: Mugambo, khush hua.
5: तीन रीजंस बताओ कि लोगों को शादी क्यों करनी चाहिए. जैसे मैं सिंगल हूँ.
6: एक है कि लाइफ में मोटिवेशन रहता है.
5: अच्छा, किस चीज का?
6: आई मीन इट इज अ नेसेसिटी दैट
5: इट इज अ नेसेसिटी. आप अभी ज्यादा खुश हो कि सिंगल ज्यादा खुश थे?
6: मैं अभी ज्यादा खुश है.
5: आपकी वाइफ साइड में बैठी है?
6: आज मैं बैठ के शी इज रियली नॉट हैप्पी द वे आई एम आंसरिंग.
5: हां, अगर बीवी नहीं बैठी होती तो फिर आप कुछ और ही बताते मुझे. एनीवे, वी विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. ऑल द वेरी बेस्ट. तीन लड़कियों के नाम जो एस से शुरू होते हैं.
6: सहना, सौम्या
5: और
6: सृष्टि.
5: सृष्टि कौन है ये?
6: सृष्टि पता नहीं, आ गया सडनली.
5: अच्छा, और सौम्या और सहना?
6: सहना तो वाइफ है जो मैंने पहले ले लिया था.
5: अच्छा, और सौम्या कौन है? सहना आप साइड में बैठी है, प्लीज इनसे पूछिए ये सौम्या कौन है, क्योंकि ऐसे फटाक से नाम आते नहीं है. कपल्स डे के दिन कलेश कराती हूँ मैं. क्या?
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: It is 10:24 on the clock and let's take a look at 6:11 subah. Thoda traffic tha right as you get out of Hamdan Sports Complex. Lekin ab everything is pretty clear. Even on 3:11, those pockets of traffic have cleared out. Thoda bahut halka bulka traffic aapko milega. Heading south, going towards Dubai from Sharjah Industrial Area 15 ke aaspaas. Then there's just a bit of congestion at Al Nahda Interchange 1 at E11. Everything seems to be quite smooth flowing. Thoda bahut 3-4 minute ka congestion aapko zarur milega at 66 Dubai Alain Road, and this is going from Al Jadaf towards E11.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Big 106.2

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: Fasten your seatbelts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
2: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
3: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी. आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी.
2: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.

0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 10:43 on the clock. Let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. कहीं पर कोई traffic की कोई फिकर नहीं है. Everything is smooth flowing. बात करते हैं दुबई शारजा की, तो शुरुआत करें 66 से दुबई अलेन रोड पर. अभी भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स E11 फ्रॉम अल जदाफ एरिया, 3-4 मिनट के लिए, ज्यादा कुछ भी नहीं. देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एज एक्सपेक्टेड एट 75 शेख राशिद स्ट्रीट. दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम दुबई फ्रेम हेडिंग वेस्ट टुवर्ड्स 94. ऑल्सो देयर हैज बीन एन इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड आउट देयर ऑन द सेम रोड. देन बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें बिजी एज एवर. देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन ऑल्सो यू विल फाइंड एट 44. Thoda bahut slow moving traffic heading towards Alkoos from Business Bay, and then a bit of traffic you'll find northbound ulti disha mein going towards Al Majaz, and this is from Al Nader interchange 1 on E11.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Alag

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
2: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
1: Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लड़ेगा?
4: यूं ही यही 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: करने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
0: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: इट्स 38 डिग्रीज आउट देयर एंड ह्यूमिडिटी हो रही है 53% पर, लेकिन अभी ये बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी अभी बढ़ेगी. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2 बिग. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 mein hoon Avni aapke saath. This is the Big Mix. Aaj hai Friday and we're going to talk about movies. Bahut sari movies aaj release nahi hui hai, ek aadhi hui hai, lekin there's one movie jo re-release hui hai back in India. Name is 1942 A Love Story, jiske gaane jo hain is era tak timeless hain yaar. कैसा लगा देखते हो मुझे अवनी यार के बीच में. वेल यू टेल मी कैसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हो कि री रिलीज हो यहाँ पर. ऑल यू हैव टू डू इज कॉल मी 800-1062 पर या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो 0543091062 पर. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर. वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties. Coming soon on Big 106.2. Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: Hi Zameer, good evening.
3: Hi ma'am, how are you?
2: I am good, how are you?
3: Good evening, very good evening. Just missing my wife.
2: Missing your wife?
3: Yes.
2: Kahan gayi
3: ho?
2: अरे अरे अरे, मोहब्बत हो तो ऐसी. ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
3: अरे सच्ची में आ रही है. एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है.
2: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
3: तो शादी को तो 5 साल हो गए.
2: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? ओफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आशिक की अलग ही मोहब्बत है. लव मैरिज थी?
3: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई.
2: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार. 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
3: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं.
2: अच्छा, आपने लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड. बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ.
3: यस, आई एम ट्राइंग टू.
2: हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. तो कितने फोन लगाते हो दिन में? कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
3: करते ही रहता हूँ. नहीं, अगर तो नहीं करता.
2: वो उठाती ही नहीं उठाती.
3: वो उठाती है, लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है. क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको.
2: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर. 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान.
3: हाँ, मेरे साथ यही हो रहा है.
2: नहीं नहीं नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी. मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ. थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो. जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
4: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata.
5: Ha ha.
4: Jaldi hata.
5: Ha ha.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: दुबई शारजा कॉरिडोर पर ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है विद हैवी पॉकेट्स अराउंड E11, अल इत्तेहाद रोड, अल नहदा एंड अल कसेज. अगर आप कहीं पर फंसे हुए ट्रैफिक में, डू लेट मी नो. कॉल करो मुझे 800-1062 पर.
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. बिग 106.2.
7: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
8: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2, फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था एक सवाल कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हो कि री-रिलीज हो और मेरे साथ कौन है? हाय रमन।
2: हाय अवनी।
1: कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया। बताइए कौन सी फिल्म आप चाहते हैं कि री-रिलीज हो यहाँ पर?
2: हम आपके हैं कौन?
1: Yeah, actually I've seen that film, और मुझे बेस्ट कैरेक्टर जो है ना उस फिल्म का टफी लगता है।
2: आप गलत बता रहे शायद।
1: क्यों, हम आपके हैं कौन में वो टफी नहीं होता है?
2: हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ओहो मैडम क्यों क्या कर लिया आपने?
1: मैं तो टफी की बात कर रही हूँ। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है?
2: एक्टिंग तो सभी लोगों की अच्छी थी, पता है। बेसिकली कुल मिलकर फिल्म अच्छी बनी हुई थी।
1: उसका कोई एक गाना आता है आपको? गाना गाओ ना।
2: यार बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया आपने, मेरे से तो याद नहीं आ रहा। अभी कुछ हिंट दे दो, मैं गा दूंगा।
1: जब वो देवर वाला गाना,
2: दीदी तेरा देवर दीवाना,
1: दीदी
2: तेरा देवर देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना।
1: Amazing, Raman, you sing so well. I love you feel कोई एक ऐसी फिल्म जो यहाँ पर री-रिलीज होनी चाहिए। All you have to do is call me 800-1062. Till then, keep listening to Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ही मच जाती है यार, जब भी मुझे टूर ट्रैवल ट्रिप की बात होती है ना, मन करता है कि अभी बैकपैक करना शुरू कर दूं।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ एंड दिस इज अ बिग मिक्स। बात कर रही हूं मैं आपकी ड्रीम हॉलिडे के बारे में जो कि आने वाली है बहुत ही जल्द। बात कर रही हूं मैं द बिग चेक इन के बारे में। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फॉर एंड शरफ डीजी, कमिंग टू यू वेरी वेरी सून ओनली ऑन बिग 106.2। और हिंट हल्का सा छोटा सा ये है कि यू माइट वांट टू स्टार्ट सेइंग गुड एंड टैक, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। धीमे धीमे ट्रैक कमिंग योर वे ओनली ऑन बिग 106.2।
1: बिग 106.2।

0: Bollywood.
1: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
2: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
3: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हेवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ
2: डाबर पुदीन हरा स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे सारे को, कह के लेंगे उसकी। 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and time है खाओ पियो ऐश करो. Peak lunch time hour चल रहा है and all you have to do is call me 800-1062 पर because मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ एक ऐसी foodie game which will tell कि आप मुझसे बड़े foodie हो कि नहीं हो, एक खाने पे टिकते हो कि नहीं टिकते हो. Having said that, भाई खाना दे दो यार. पता नहीं यार इस जवानी में इश्क सिर्फ खाने से कैसे हो गया मुझे. Well, if you are also आशिक खाने का, कॉल करो मुझे द टोल फ्री नंबर 800-1062 पर. टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले हैं खाओ पियो ऐश करो. कौन है हमारे साथ? हाय
2: हाय, आई एम प्रणव.
1: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो? कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
2: 11.
1: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस. ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम. आई एम गोना गिव यू टू चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन दोनों डिशेस में से कौन सी डिश चूज करोगे. ठीक है?
2: डन.
1: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
2: समोसा.
1: ओके, समोसा या डोसा?
2: समोसा.
1: समोसा या राजमा चावल?
2: This is a difficult one. I think राजमा चावल.
1: Okay. राजमा चावल या पास्ता?
2: राजमा चावल.
1: राजमा चावल या बर्गर?
2: राजमा चावल. I think you have hit a dead end with this question.
1: ना, राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
2: I think भल्ला पापड़ी चाट.
1: देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए. Okay, भल्ला पापड़ी चाट या फिर पिज्जा?
2: भल्ला पापड़ी चाट.
1: ओके, भल्ला पापड़ी चाट या लास्ट? ओके, लास्ट समोसा.
2: समोसा.
1: भाई घूम फिर के वापस समोसा पर ही आए. आई सी देयर अ लॉट ऑफ पीपल जो समोसा फैन है. आई एम वन ऑफ देम. आई विल नॉट रेट यू एज अ फूडी. इट्स ओके, यू आर एक्चुअली 11/10.
2: Thank you.
1: Okay, thank you. Bye. If you think you are a bigger foodie than Pranav, all you have to do is call karo mujhe 800-1062 par and we'll see if you are a bigger foodie than Pranav or not.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Fasten your seat belts, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
4: Kuch kahaniyan sirf suni nahi jati, mehsoos ki jati hain. Is 29th August, shor ko piche chhod dijiye aur kho jaiye lafzon ke saaz mein. Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Thak Thak. For the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat, aur dil ko chhu lene wale kisse at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 PM. Show begins at 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Keep an eye on the Dubai Sharjah corridor because congestion ho sakta hai, ho raha hai E11, Al Nada and Al Qazaiz mein. And if you're heading towards Business Bay, Downtown ya fir Al Barsha, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम साथ में लेके चलना अगर कहीं और फंसे हो. डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
6: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. बिग 106.2. बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जरा सुनना यार, वीकेंड आ रहा है. मुझे एक बहुत ही एप्ट शायरी मिली है वीकेंड के लिए. सुनो जरा, बताओ जरा, ये जानी पहचानी आवाज लगती है आपको कि नहीं?
2: चाहे करनी नकल है पर स्कूल में आना अव्वल है. दिल की कही बातों पर क्यों ध्यान देना है. सस्ता टिकाऊ जैसा भी मिले पर जॉब पहले लेना है. फिर 5 दिन रगड़ कर खुद को आराम, वीकेंड पर छोड़ोगे जिंदगी भर का सारा सुकून. भैया 2 दिनों में निचोड़ो.
1: बताओ भाई, निचोड़ सकते हो 2 दिन में सारे मजे? वेल, अगर आपने ये आवाज पहचान ली है, दिस इज इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल, जो कि आने वाले हैं दुबई में अपना पहला शो लेकर. शो का नाम है धक धक, 29th August. जिक्र ब्रिंग्स दिस शो धक धक, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे ऑफकोर्स ऐसी बहुत ही सुंदर शायरी और कहानियां. And a warm chai at James Albersha National School. Doors open at 4:30 PM. Show start hoga 5:30 baje. Tickets aapko mil sakti hain 199 dirhams ke starting price par. Available exclusively on District, including high tea and parking. Lekin ab aapko aur mere

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:05। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: बिग 106.2 पर मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जब भी यार एक्शन थ्रिलर फिल्म्स की बात आती है ना, मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही नाम आता है, दैट इज तापसी पन्नू. अपकमिंग फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पर September 3rd. फिल्म का नाम है गांधारी. द गुड पार्ट इज ये डायरेक्ट की गई है देवाशीष मखीजा ने, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे और बंटी बबली जैसी फिल्मों में भी काम किया है. इमेजिन दैट. द फिल्म इज ओरिजिनल, कोई रीमेक नहीं है. और फिल्म बेस्ड है एक किडनैप्ड लड़की पर. उसकी मम्मा वो किडनैपर को कैसे ढूंढती है और वो लड़की को कैसे ढूंढती है, दैट्स द फिल्म अबाउट. इट्स एन एक्शन थ्रिलर. September 3rd, मार्क योर डेट्स बिकॉज आज फ्राइडे है यार. आज कुछ खास फिल्में रिलीज नहीं हुई है, एक रिलीज हुई है थिएटर में, दैट इज इन सीरियस आउट ऑफ द फादर. विल वेट फॉर September 3rd फॉर गांधारी. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! Khushua!
3: Hi, Zameer. Good evening.
4: Hi, ma'am. How are you?
3: I am good. How are you?
4: Good evening. Very good evening. Just missing my wife.
3: Missing your wife?
4: Yes.
3: Kahan gayi ho?
4: Too much.
3: Arey.
4: India.
3: मोहब्बत हो तो ऐसी ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
4: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
3: ओए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
4: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
3: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आश की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
4: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
3: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
4: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
3: अच्छा।

0: आपने लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी, हाय दैट्स रियली सैड, बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ.
1: यस आई एम ट्राइंग टू
0: हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया,
1: मैं करता ही रहता हूँ. नहीं ऐसा तो नहीं करता, करता रहता हूँ उसको.
0: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, दो तीन दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
1: जाएगी. साथ यही हो रहा है.
0: नहीं नहीं नहीं अपने आप परेशान हो जाएगी. मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा दो तीन दिन कॉल मत करो, जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
4: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: Big weather update brought to you by Almas, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 37 degrees out there with 64% humidity and क्या भाई, एक डिग्री टेम्परेचर गिरता है लेकिन humidity 2% बढ़ जाती है.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. 6.2.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 आने वाला है. क्वेश्चन मार्क है भाई, अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ लेकिन इट्स स्टिल इन द टॉक्स. जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 1 था द सीरीज, ओ माय गॉड, इट वाज माइंड बॉगलिंग यार. हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट. स्टारिंग आन्या सिंह, राघव जूल, लक्ष्य, मोना सिंह, बॉबी देओल, क्या बढ़िया कास्ट थी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये पहली शाहरुख खान की प्रोडक्शन थी ऑन नेटफ्लिक्स, लेकिन इतना अच्छा नाम कमाया उनके बेटे ने कि सीजन 2 की बातें हो रही हैं. ऑल आई एम एक्साइटेड अबाउट इज सच वाइबफुल ट्रैक्स यार. क्या मजा आता ना बोलने में, गफूर बोल के दिखाओ यार. कॉल करो मुझे 800-1062 पर बिकॉज वी गॉट गेट दैट वाइब बिकॉज आज फ्राइडे है, वीकेंड ऑलमोस्ट आ चुका है, कदमों में है. यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

0: शायद तुमने कोई बताया ना कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जो लेकर आई है द बिग चेक इन। करना कुछ नहीं है आपको, अपने बैग्स पैक करने हैं, पासपोर्ट रेडी करना है, बिकॉज हम आपको लेके जा रहे हैं द बिग चेक इन पर। कहाँ इस बार वो आपको गेस करना है। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फॉर एंड शौरभ डीजी, कमिंग टू यू वेरी वेरी सून ओनली ऑन बिग 106.2। क्विक हिंट तो देना बनता है यार, बस इमेजिन करो कि अब आप बोलना शुरू हो गए हो यार। Good and tag. तो कम ज़िंदगानी, उससे भी कम है जवानी। उससे पहले ही द बिग चेक इन पे चलाना शुरू कर दो, गेस करो। The song coming away after character Dila 2.0. Till then, you keep listening to Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 37 degrees out there, but with humidity 67%, which makes you feel के 50 degree हो रहा है यार।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: बॉलीवुड 106.2 पे मैं हूं अवनी आपके साथ है। अगर आपने भी अपना अगले वीक का स्केड्यूल नहीं बनाया है, आप मेरी कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप आते हो संदीप रेड्डी वंगा की कैटेगरी में, तो उन्होंने अपना 2027 तक का स्केड्यूल आज ही बता दिया। एनिमल पार्क की अपडेट है, मिड 2027 में रिलीज होने वाली है ये फिल्म। ही इज गोना शूट दिस फिल्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज फिल्म स्पिरिट। ओ माय गॉड, भाई मैं बता रही हूँ, आई फुल प्रोडक्टिव मोड में जा चुके हैं, इसीलिए आज ही सारा स्केड्यूल निकल आया है। Having said that, Animal film ने यार 110 plus million dollars कमाए थे worldwide। उसका sequel Animal Park बहुत ही बड़ी film होने वाली है, with again amazing songs, amazing cast। Just that कि हमें 2027 mid तक wait करना पड़ेगा। Well, let's see how it goes। You keep listening to Big 106.2।

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
3: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
4: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is a Big Mix. 29th August को भी हम मिल सकते हैं. कहाँ पर? जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल में, जहाँ पर जिक्र लेकर आ रहे हैं इंडिया से सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप ख्याल. दुबई में उनका पहला शो है जिसका नाम है धक धक. इमेजिन करो यार, अपनी धक धक के साथ ये शो देखोगे. इतनी सुंदर कहानियाँ, सुंदर पोइट्री के साथ विद अ वार्म चाय. टिकट स्टार्ट हो रही है ओनली जस्ट 199 dirhams, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट. डोर्स विल ओपन एट 4:30 PM. शो स्टार्ट होगा 5:30 PM. द टिकट्स इंक्लूड हाई टी एंड फ्री पार्किंग. लेकिन आपका और मेरा रिश्ता मुझे पता है थोड़ा स्पेशल है, अलग है. तो इसीलिए आपको अगर फ्री में टिकट्स जीतनी है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप लिसनिंग टू अस ओनली ऑन बिग 106.2.

0: निकले, बहुत हो गया पिछले वक्त।
1: बीट 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
1: Yes,
4: Abdul Basit, good morning. How are you doing?
5: Hi, good morning, Sid. I'm doing well. Thank you for asking.
4: आपका बॉस आपको जीने ना दे या और do you have a good boss?
5: I have a good boss, fortunately.
4: You have a good boss. That's what you're going to say on a public broadcasting medium like the radio, right? वो आपस में बात करेंगे तब शायद कुछ और information मुझे मिल जाए Abdul से. But Abdul, what plans for a Friday? The weekend is almost here.
5: This weekend I'm working on Saturday.
4: नहीं,
5: फिलहाल संडे का कुछ प्लान नहीं है।
4: कह दो कि ये झूठ है।
5: क्या करें यार, करना पड़ता है।
4: और 28 तारीख का क्या प्लान है? लॉन्ग वीकेंड
5: तो कुछ प्लान नहीं है, बट वी विल प्लान सून।
6: अरे कुछ नहीं अंकल, रात को दूध में तुक मलंगा मिला के पीजिएगा, सब सटीक हो जाएगा।
7: अरे मलंगा फलंगा से कुछ नहीं होता। दो तीन हो गया।
8: पापा आप ठीक है?
9: हाँ बिट्टी घूमे,
6: आराम से घूमे।
4: दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस फिल्म्स। ऑलराइट, बताइए अब्दुल, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
5: बरेली की बर्फी।
4: एब्सोल्युटली करेक्ट,
5: वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स आल्सो,
4: एंड
5: वन ऑफ द वेरी फ्यू फिल्म्स दैट आई वॉच इन थिएटर, सो आई रिमेम्बर इट वेरी वेल।
4: और मुझे लगता है कि अब्दुल आप जितनी मेहनत करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, आप वो दिन दूर नहीं है कि पंकज त्रिपाठी बन जाओगे आप, एंड आपको एक विद्रोही जी चाहिएंगे आपकी गर्दन ठीक करने के लिए।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
10: If you're heading out around this time towards Dubai Marina JLT या फिर Jebel Ali, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यूजुअल ट्रैफिक है शेखजाद रोड पे, अगर आपको कहीं और ट्रैफिक मिल रहा है, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
1: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। बिग 106.2, बिग 106.2। The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
1: Insurance Market, 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating, built in UAE, trusted across UAE.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी, जिसका फिलहाल हो रहा है जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, हम हमेशा रहती हैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो अस ऑन 106.2 बिग FM. एंड आप मुझे भी डीएम कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA. एंड क्या वीकेंड के प्लान्स हैं, अभी तक बने कि नहीं बने, डू लेट मी नो. मुझे मैसेज करना, बिकॉज मी एंड यू सेलिंग इन द सेम बोट. समझ नहीं आती यार, एग्जैक्टली वीकेंड पे करें क्या.

आप मुझे भी डीएम कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNI Y RRR एंड क्या वीकेंड के प्लान्स हैं, अभी तक बने कि नहीं बने, डू लेट मी नो, मुझे मैसेज करना बिकॉज मी एंड यू सेलिंग इन द सेम बोट. समझ नहीं आती यार एग्जैक्टली वीकेंड में करें क्या. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डीएम मी, हम डिसाइड कर लेंगे. AVNI Y RRR इट इज. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2. मिलते हैं संडे को बिग रिकमेंड्स के साथ 3 से 6.

0: क्या तुमने कभी बताया ना कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: हाँ जी, फाइनली इट्स अ फ्राइडे. कभी कभी मुझे लगता है मंडे से फ्राइडे तक का इंतजार, द सफर इज सो लॉन्ग, जस्ट लाइक आपके और मेरे अप्रेजल का. बट फिलहाल द वीकेंड इज हियर, वी आर ऑल सेट टू ब्रिंग इन द वीकेंड. अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हैं जो वीकेंड पे कुछ नहीं करते हैं, तो आप और मैं बेस्ट हैं, क्योंकि हफ्ते भर हम इतना कुछ करते हैं, थोड़ा रेंट तो वसूलना चाहिए ना घर रह के. फिलहाल अगर काफी टाइम से हॉलीडे पे नहीं गए हो, वी आर एक्चुअली टेकिंग यू समवेयर ब्यूटिफुल, समवेयर स्टनिंग, एंड समवेयर जहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होगा. ऑल द डिटेल्स कमिंग अप, बट किक स्टार्टिंग द शो विद कैरियोकी. घर जाते जाते गाने गाते हैं, माहौल बनाते हैं. अगर आपके अंदर भी कुमार सानू सुनो निगम छिपा हुआ है, तो उसे बाहर निकालो. यू कैन सेंड मी योर व्हाट्सएप ऑन 0543091062. वीकेंड वाला माहौल है.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हां जी, द टाइम राइट नाउ 5:07।
1: Bollywood.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली फील्स है, एंड ऑफ कोर्स व्हाइल यू हेडिंग बैक होम हम यहाँ पे गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं विद द कैरियोकी। अब दो चीजें हैं जो देसी इसको बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छा खाना और गाना गाना। तो बस अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं,
1: कैरियोकी,
2: This is it. We do this every single evening. Bathroom singers के लिए एक official platform to showcase your talent. मतलब इतना talent खाली bathroom तक क्यों रहे? लोगों के कानों तक, उनकी गाड़ियों तक जाए। ये जो गाना है, it's a party number, weekend वाली feels है, and of course अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी, if I'm not wrong, बहुत सारे artists भी थे इस movie में।

थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मूवी का नाम सत्ते पे सत्ता, अल्टीमेट पार्टी एंथम बाय द वे. आरडी बर्मन, किशोर कुमार, अगर आपको याद आ गया है देन बस फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, आपकी आवाज में ये गाना सुनेंगे. वी आर कैरियोकिंग 800-1062 पर. यू कैन ऑल्सो सेंड मी अ व्हाट्सएप एंड आई विल कॉल यू बैक 0543-09-1062 पे.

0: Big. Big. 106.2.
1: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: Homes R Us big deals are here. Save up to 90% off on furniture and home accessories. Best deals, biggest discounts. Hurry, only while stocks last. Exclusively at Homes R Us, Zabeel Furniture Mall, Ood Mehta.
0: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August, शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal. With his soul-stirring show, Thak Thak, for the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat, aur dil ko chhu lene wale kisse at GEMS Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Honestly, Friday evening surprisingly काफी traffic है इस वक्त शेख मोहम्मद बिन जायद पे। फिलहाल इट्स 30 टू 33 मिनट डिले। एतिहाद मॉल से आगे काफी स्लो मूविंग है, हैवी ट्रैफिक नियर गिसेस इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप नहादा के आसपास हैं, वहां भी पैची ट्रैफिक है। बम्पर टू बम्पर डेरा से इफ यू गोइंग टूवर्ड्स अबू हेल, देयर इज हैवी ट्रैफिक नियर करामा, ऊद मेहता एंड जाफरिया साइड एज वेल। शेख जायद पे फिलहाल इट्स शोइंग अ 22 मिनट डिले। एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट, गेट इन टच विद मी 800-1062 पर।
8: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
9: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
0: Big 106.2.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki shaam hai, we are bringing in the weekend while you're heading back home. We are karaoke-ing. Agar aap gana gaane ka shauk rakhte hain, gaana aaye ya na aaye, shauk hona chahiye, then this is it. This is your platform. Joining us is Shania. तो ये आन्या और सानिया का मिक्स हो गया है, शानिया है ना?
2: नहीं, मेरा नाम बहुत पुराना है, आन्या और सानिया बाद में आया।
1: शानिया, शानिया इज यू नो गुड वाइब, ये हमेशा हंसती रहती होगी, कुछ भी हो रहा लाइफ में शी इज ऑलवेज लाफिंग, यू लाइक मी, बट मैं बहुत गलत ओकेजंस पे हंस देती हूँ तो मैं फंस भी जाती हूँ, क्योंकि
2: आई हैव दैट प्रॉब्लम टू, माय हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी दैट माय ब्रेन एज इज प्रोबब्ली लो,
1: माय ब्रदर सेज द सेम, के योर आईक्यू इज प्रोबब्ली वेरी लो, यू डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, यू जस्ट कीप लाफिंग। देखो, हंसी एक ऐसी चीज है जिस पे मेरा बिल्कुल जोर नहीं चलता है और मैं बहुत जोर से हंसती हूँ, बट आई थिंक जो लोग जोर से हंसते हैं वो दिल के साफ होते हैं, आई लाइक टू बिलीव दैट।
2: I agree.
1: Filal Shania, what plans? The weekend is here.
2: The weekend is here. I'm going to curl up with a book, or I'm going to watch something intelligent with a cup of tea. That's it.
1: What something intelligent? That is something that I don't do. But yes, my plans are very similar. I do not step out. I just like being home over the weekend. But do you like singing?
2: I love singing.
1: Chalo ji, to gaana to aapne pehchan hi liya hoga.
2: Of course.
1: To ab Shania ki awaaz mein sunenge aaj sham. All right, Shania, here's your track.
2: बत्तियां बुझा दो।
1: ओहो।
2: यार तुम्हें किस मूड पे ले आया कि दिल करे हाय
1: हाय
2: तो

0: बत्तियां बुझाने से भी नींद कहाँ आएगी। आई लव दिस सॉन्ग।
1: बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी,
0: बत्तियां बुझा दो वरना भाभी जाग जाएगी।
1: भाभी जाग जाएगी।
0: ओहो, माहौल बना दिया है वीकेंड का। शान्या, यू वर फैंटास्टिक, यू वर फैंटास्टिक। ओह माय गॉड, सच अ गुड वाइब।
2: थैंक यू सो मच,
0: बहुत मजा आया। सो आपको किसकी याद आती है जब आप ये गाना सुनते हो?
2: मुझे बचपन की याद आती है।
0: यू साउंड वेरी यंग टू बी ऑनेस्ट।
2: नहीं, मुझे याद बचपन की आती है क्योंकि मैंने ये गाना बचपन में सुना था।
0: It's a party anthem, I think, once you...
2: It's a party anthem, now we sing it at parties. But I know. Yeah, but the first time we heard the song, it was back at home with mom and dad. Like, it was such a funny movie.
0: I haven't seen the movie, but I love the gana. जब भी घर की कोई पार्टी होती है, स्पेशली मम्मी पापा वाली, तो ये गाना 100% बजता है। एंड 12 बजे के बाद अंकल लोग जब माहौल में आ जाते हैं तो वो गाते भी हैं, तो बहुत मजा आता है।
2: You just said it yourself, अंकल जब माहौल में आ जाते हैं, so I'm like in that range.
0: You are not. I was just thinking the same, Asham. मैं चश्मे सर पे रखे हुए थे, मैं पूरे अपने बैग में डेस्क पे ढूंढ रही थी। आई थिंक आई ऑफिशियली रीच दैट एज जब मैं चीजें भूलने लगी हूँ। बाय शान्या। क्या लो आई क्यू काफी है? मुझे लगा कहने लो आई क्यू काफी है। बट यू हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। यू आर फैंटास्टिक।
2: यू हैव अ ग्रेट वीकेंड टू मानसी। थैंक यू सो मच।
0: बाय बाय
2: बाय।
0: ये karaoke, we enjoy, we have fun, हम गाने गाते हैं, मस्ती करते हैं। अगर आपको भी गाना है, then 800-1062 is the number to dial.
3: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल अगर काम करते करते छुट्टी हो गई है तो छुट्टी पे जाने का टाइम आ चुका है. एंड इफ यू वंडरिंग कि यार छुट्टी पे तो जाना है, बट व्हाट अबाउट माय बैंक बैलेंस, व्हाट इफ आई टेल यू इट्स एन ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप. हां जी, वी बैक विद द बिग चेक इन. इमेजिन यू, योर पासपोर्ट एंड अ फ्री टिकट टू दिस फैंटास्टिक डेस्टिनेशन एंड ऑफकोर्स ग्रेट कंपनी आप ट्रैवल करेंगे टीम बिग के साथ. द बिग चेक इन इज हियर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स डैन्यू प्रॉपर्टीज, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, एसोसिएट स्पॉन्सर फोर्ड and Sharaf DG coming very very soon starting this Monday on Big 106.2. Achha, main aapko hint deti hu hum kahan le jane wale hain. Dawn 2 dekhi hai? Dawn 2 kahan shoot hui thi? That's your hint. Agar समझ में आ रहा है where are we taking you this year, then do leave in your comments. There's a reel up on our Instagram page 106.2 Big FM. WhatsApp करके भी बता सकते हो कि कहाँ जाने वाले हैं इस साल. 0543091062 पर.

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूँ क्या।

0: 106.2.
1: मेरे बॉयफ्रेंड से भूलू भूलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको।
0: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड इज हियर, वीकेंड वाला माहौल है. यू नो व्हेन वी वर किड्स हम सोचते थे बड़े होके हम ये करेंगे वो करेंगे. देयर इज वन थिंग जो मैं एज एन एडल्ट करती हूँ जो मैं बचपन में नहीं कर पाती थी, 11 12 बजे तक दोपहर के सोना. यस, इफ यू ऑल्सो ग्रो अप इन अ देसी हाउस होल्ड तो 8 साढ़े 8 के बाद सोने दिया ही नहीं जाता है. आई थिंक देर इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन इन देसी फैमिलीज एंड दैट इज स्लीप शेमिंग. मम्मी आ जाएगी, पंखे बंद कर देगी, पर्दे हटा देगी एंड 8:30 बजे बोलेगी इतना लेट उठे हो, अब तो सीधा लंच ही करोगे क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो हो चुका है. 8:30 बजे लंच, आपके सर में दर्द है क्योंकि तुम देर तक सोते हो, पीठ में दर्द है क्योंकि तुम देर तक सोते हो, ग्लोबल वार्मिंग है क्योंकि तुम देर तक सोते हो, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे देर तक सोने से हो रहा है. सो ना आज क्यों, या आपके घर में भी होता था कि मतलब 8:30 9 के बाद सोना वाज घोर पाप. डू लेट मी नो व्हाइल वी प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second rule. यू गेट 5 seconds. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. साउंड्स इजी बट ये इतना इजी है नहीं.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: It is the weekend, keeping you company, bringing in the weekend. I am Mansi, and I want to ask you this question. I saw a reel on social media where a poor child is sleeping. Mummy has opened a kambal, opened the curtains, and suddenly I remember childhood. My house is still like this. I live far away from home, but when my mom gives me a call around 10-ish, I am a late riser. एंड मैं फ़ोन उठा के बोलती हूँ, नहीं नहीं मैं कुछ काम कर रही थी, क्योंकि जब जब मैंने सच बोला है मुझे लेक्चर मिला है. देसी पेरेंट्स के हिसाब से लॉजिक ये है कि अगर आप 5 से 8 की विंडो में सुबह नहीं उठे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क होगा. क्या आपके घर में ऐसा होता था? इफ़ यूर अ पेरेंट, क्या अपने बच्चों को आप ये लॉजिक देते हैं? मुझे बताओ. 800-1062 पे वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल, किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ऑनेस्टली मैं ना बहुत सिंपल लड़की हूँ. मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती हूँ. मैंने 2-3 बार फ़ोन उठाया, कोई बोल नहीं रहा था, तो मैं बड़ी खुश हो गई अंदर ही अंदर से कि वाह यार, मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, मतलब आज भी मेरे जलवे बरकरार हैं. फिर जब वहाँ से आवाज़ आई 4th बार तो सुप्रिया निकली. हाय सुप्रिया.
2: हाय मानसी.
1: यार मैंने जो ख्याली पुलाव पकाए थे
2: तोड़ दिया, सॉरी.
1: मैं इतनी खुश हो गई थी कि यार देखो अभी भी कुछ जलवे बाकी हैं, ब्लैंक कॉल आ रहे हैं आज के जमाने में. सुप्रिया कहती मैं ही कर रही थी, आवाज नहीं आ रही थी. बट कोई बात नहीं. सुप्रिया बताइए आप मुझे कि क्या करती हैं आप?
2: मैं स्कूल में काम करती हूँ.
1: आर यू टीचर?
2: No, I'm the HR.
1: Oh, you're the HR. यार टीचर्स जो हैं वो तो छुट्टी लेने पे बोलती हैं पेरेंट्स से साइन करवाओ. जब उन्हें खुद छुट्टी चाहिए होती है तो आप किससे साइन करवाती हैं?
2: प्रिंसिपल से.
1: अच्छा इन्हें भी परमिशन लेनी पड़ती है?
2: हाँ तो.
1: अच्छा ये देखो, हाँ तो. टीचर्स क्या बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए?
2: Oh my God, कितने. उनको तो कोई भी बहाने, anything under the sun is a bahana for them.
1: Wow, देखो students, if you're listening to us, आपकी teachers are also exactly like you. उनके भी बहाने काफी हैं. फिलहाल what plans for the weekend?
2: मेरे बेटे का birthday है.
1: Oh,
2: so
1: nice.
2: We are planning a nice dinner.
1: It's very very nice. Happy birthday to him. फिलहाल मामा के साथ we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें आपने बतानी हैं 5 second के अंदर. All the best.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly name 3 green vegetables for me.
2: Palak, broccoli, beans.
1: Yeah, HR. वो भी स्कूल में थे तो बताना ही था. 3 Bollywood celebrities जिनका नाम शुरू होता है with the letter M.
2: मनीष मल्होत्रा.
1: Oh nice.
2: मुकेश.
1: हैं?
2: मुकेश.
1: मुकेश अंबानी जी नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बट वो सारे सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं, वो अलग बात है. फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 ऐसी चीजें अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में बदल सकती तो रातों रात बदल देती.
2: Oh my God, snoring, being boring,
1: snoring and boring,
2: and then being confused.
1: ये सब तीनों चीजें शादी के पहले पता थी आपको कि वो स्नोर करते हैं,
2: बोर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे बिल्कुल चीट किया गया है इस मैरिज में.
1: तो कंजूस क्यों है?
2: कंजूस पति है नहीं. Doesn't buy me gifts on our anniversary, nothing on birthdays, सिर्फ डे सारा प्यार.
1: ये क्या प्यार है? मुझे ऐसा प्यार पसंद नहीं, मुझे गिफ्ट वाला प्यार पसंद है. अब ऐसा प्यार अपने पास रखो. मूविंग ऑन, 3 Bollywood movies जिनके टाइटल में दिल आता है.
2: दिल क्या करे
1: और
2: दिल
1: है. ओके
2: दिल और
1: खालस. 5 सेकंड फटाफट. अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे
2: दिल जाता है. सॉरी
1: बच्चे सुन रहे होंगे यार.
2: हाँ.
1: क्विकली नेम 3 things दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
2: Umbrella,
1: nice.
2: Sand, water.
1: Very good. 3 Bollywood celebrities जिनकी शादी सेलिब्रिटी से हुई है.
2: आलिया भट्ट.
1: नाइस.
2: रणवीर सिंह.
1: और
2: दीपिका पादुकोण.
1: एक दूसरे से ही हुई है, चलो कोई बात नहीं, बट नॉट बैड है सुप्रिया. शुरू में थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर जा रही थी, बट बाद में पिकअप हो गई. आपने पहली बार के हिसाब से अच्छा खेला है.
2: थैंक यू. पता है सुनने में ज्यादा इजी लगता है.
1: आई नो राइट, बट इतना इजी है नहीं. बट आज जो आपने जो सुनाया हमें कि टीचर्स जो है बच्चों से भी ज्यादा बुरे बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए, ये ज्यादा अच्छा था.
2: आई होप मेरे टीचर्स नहीं सुन रहे हो मुझे.
1: आप HR हो, यू डोंट हैव टू वरी.
2: होता है.
1: हाँ मतलब बस कर देना हायर फायर. चलो यार.
2: ओह माय गॉड.
1: ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट वीकेंड. बाय.
4: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I think honestly, more than love, we need a holiday that too paid. मतलब यहाँ से annual leave के भी पैसे मिले, वहाँ से जेब से एक भी दिरहम खर्च ना हो. Is this a dream? No, it's going to be your reality. The Big Check-In is back. Your dream holiday is coming very, very soon. And this time, a destination jo bahut se logon ki bucket list mein hai. Presenting sponsors, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsor, Ford and Sharaf DG. Coming very, very soon, starting this Monday on Big 106.2. Chota sa hint deti hun. You might want to start saying Guten Tag. अगर गेस कर लिया कहाँ जाने वाले हैं साल, देन अपने गेसेस हमें भी बताओ 0543091062 पे. यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस ऑन इंस्टा 106.2 बिग एफ एम. इट इज
0: बिग 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi on the phone line. Shaika. Gana tha sahiba, ab hai Shaika. Hi, Shaika.
2: Yeah, hi. How are you?
1: I am good. Bada acha naam hai, iska matlab kya hai? Shaika. वैसे बड़ा अमीरों वाला नाम है ये. नाम से ना बड़ा फर्क पड़ता है. शायका मतलब शायका जो है वो बिजनेस क्लास में ही जाएगी. शायका जो है वो 7 कोर्स मील ही खाएगी. शायका नहीं जो है वो ऐवी हमारी तरह वड़ा पाव खा ले, है ना शायका? देखो ऐसे कहते हैं मॉडेस्टी. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट शायका.
2: ओके.
1: तीन ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में मिलती हैं. और ओके फटाफट शायका. ओके इट्स 5 सेकंड ओनली. तीन रवीना टंडन की मूवीज. मोरा था वो. थ्री थिंग्स दैट यू हेट डूइंग ओवर द वीकेंड्स.
2: क्लीनिंग
1: और
2: गोइंग आउट.
1: थ्री क्वालिटीज जो बहुत जरूरी है टू बी शायकास फ्रेंड.
2: ऑनेस्टी
1: और टाइम खत्म. या आप हमेशा से इतना धीरे धीरे बात करते हो स्लोली स्लोली, ये कि आज कुछ स्पेशल है?
2: No, actually I am not well. अच्छा. That's why I can't talk fast.
1: Okay. Three things that you notice in a guy when you first see him.
2: Looks.
1: Good looks.
2: Personality. Yeah. Good looks.
1: Time खत्म हो गया. हाँ.
2: Yeah.
1: From where he is कैसे पता चलेगा देखकर?
2: Yeah, that's true.
1: Good looks is valid. तो ये मिल गया आपको good looks वाला बंदा कि ढूंढ रहे हो?
2: मिला है.
1: ओके तो ये कहाँ मिला गुड लुकिंग बंदा? जस्ट आस्किंग फॉर अ फ्रेंड. शायका हिट और मिस था. कुछ जवाब आपने दिया. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर नॉट ऑन टाइम बट आई होप यू हैड फन प्लेइंग द गेम.
2: या
1: यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बाय.
2: थैंक यू मैम. थैंक यू.
1: ये 5 सेकंड रूल. अगर आपने खेलना है एक ही रूल है मुझे कॉल करना है 800-1-0-6-2 पर.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: फ्राइडे सुबह से ना फ्राइडे शाम का वक्त कटता ही नहीं है। फिलहाल 7:08 हुए हैं।
1: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill, मैं हूँ Mansi. The best part about the weekend is कि आपको बिना अलार्म के सोने का and देर तक जाग के सुबह देर से उठने का मौका मिलता है. अब people who have kids, your story is different, but I'm talking about a lot of us जो हमें honestly बचपन में नहीं मिलता था, क्योंकि बचपन में अगर आप भी देसी घर में बड़े हुए हैं, अगर आप 5 से 8 की विंडो में नहीं उठो even on the weekends, तो मतलब आपका फ्यूचर बर्बाद है. Right now I've got Bhavin with me. Hi Bhavin.
2: Yes, hi Mansi, how are you?
1: I'm good. So, assuming कि आप भी देसी घर में बड़े हुए हैं, मैं कह रही थी कि अगर 5 से 8 के बीच में सुबह नहीं उठो तो पेरेंट्स का ये ताना होता था कि आप तुम्हारा फ्यूचर जो है वो डार्क है.
2: हाँ, वही वो तो ताना सुनता ही थे.
1: मुझे समझ नहीं आता, व्हाट इज अप विद देसी पेरेंट्स इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मतलब आप 8 घंटे सोते हो फिर भी वो कहते हैं कि तुम 18-18 घंटे सोते हो. हाउ इज दैट पॉसिबल?
2: वो इंटरटेन हो ही जाता है.
1: आपकी मम्मी क्या ताना मारती थी?
2: हाँ, सेम थिंग कि भाई यू नो चलो उठो, कुछ काम करो, हेल्प करो, यहाँ वहाँ वगैरह.
1: सुबह 8 बजे बच्चा क्या काम करेगा, मुझे नहीं समझ में आया. सो आपके बच्चे हैं?
2: यस यस.
1: आप उन्हें उठा देते हो सुबह? मतलब आर यू फॉलोइंग द ट्रेडिशन कि पंखे बंद
3: पर्दे आउट?
2: नहीं नहीं, वो तो नहीं है, बिकॉज़ बाय द टाइम आई स्टे आई एम आउट बिफोर दे गेट अप.
1: आप उन्हें सोने देते हो? लाइक देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू देयर स्लीप?
2: नहीं,
1: yeah. अच्छा है आपने ये जनरेशनल कर्स ब्रेक करा है. मेरी मम्मी तो आज भी जज करती है. मैं लॉन्ग डिस्टेंस में रहती हूँ उनके साथ, फिर भी मैं झूठ बोलती हूँ कि मैं उठ गई थी, काम कर रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई. क्योंकि जब अगर मैं उनको बताया कि मैं 10-10, 11-11 बजे तक सोती हूँ, तो मुझे बहुत सॉलिड लेक्चर मिलता है.
2: 10-11 बजे तक तो इट्स लाइक मेबी वंस इन अ ब्लू मून.
1: ये देखो, ये भी मुझे जज कर रहे हैं, ये भी मुझे जज कर रहे हैं. मुझे रातें अच्छी लगती हैं, आई एम अ नाइट पर्सन. तो आप कितने बजे उठते हो सुबह वीकेंड पे?
2: वीकेंड पे डिपेंड्स, वही 8 बजे.
1: आप नहीं हो मेरे टाइप के सर, जो मैं वीकडे पे 8 बजे, मतलब मेरे लिए इट्स लाइक बिफोर सनराइज. यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू सो मच, बाय.
2: थैंक यू मासी, गुड डे, गुड डे.
1: There's also poll up on our Instagram page. अगर आप भी देसी घर में बड़े हुए हो तो क्या आपको भी स्लीप शेम किया जाता था? आपके घर वाले क्या ताने सुनाते थे? वहां जाके बताइए. While I keep you company with the best music, ये है Big Thrill, Mansi.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and the big thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by Strive.ae and Dabur Shilajit.
1: Happy, happy weekend. Over the weekend, if you want to just revisit a cult classic, aaj hi ke din 1998 mein release hui thi Mani Ratnam ki ye classic, jisne hame 7 stages of love sikhaye the. Dilkashi, uns, ishq, aqeedat, ibadat, junoon, and of course the end. To bahut hi kamal movie thi. Pretty Zinta ka debut hua tha. This is a cult classic. In fact, एज एन अडल्ट जब मैंने ये मूवी देखी तभी मुझे समझ में आई. ऑनेस्टली एज अ किड मैंने ये देखी नहीं, देखी मुझे याद भी नहीं है और समझ भी नहीं आई होगी. बट दिस इज़ वन मूवी दैट आई कीप रीविजिटिंग एवरी नाउ एंड देन बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल. लेट मी सी हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर द मूवी. शाहरुख खान, प्रीटी जिंटा एंड मनीषा कोइराला. अब इससे ज़्यादा हिंट्स हो ही नहीं सकते हैं. दिस इज़ अ कल्ट क्लासिक.

जाता तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: Books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34 फिलहाल, ह्यूमिडिटी है 71% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: The Beat Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. You have Big Thrill and Mansi. I'm sure you're prepping up for the weekend. Iske baad aayega long weekend. And if you enjoy Shiro Shairi, poetry, प्यार मोहब्बत की बातें, यू रोमांटिसाइज लाइफ, आपको किससे कहानियां पसंद है, देन यू हैव टू गेट योर टिकट्स बिकॉज दिस इज फॉर यू टू स्लो डाउन एंड अनवाइंड एंड एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. 29 अगस्त को जिक्र आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया के सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल. ही इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद द शो धक धक. लॉट ऑफ पोएट्री, बहुत सारी दिल को छू देने वाली कहानियाँ, साथ में गरम गरम चाय, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद पोएट्री एंड कहानी. चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ दिस एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM. शो शुरू होगा 5:30 PM एंड टिकट्स जो है आपको एक्सक्लूसिवली मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट पे. They start at 199 dirhams, which includes your high tea and free parking. In fact, tickets jeetne ka mauka yahan bhi milega. Stay right here, Big 106.2 pe. वैसे कुछ देर पहले मैंने आपको hints दिए थे मनी रत्नम की cult classic Pretty Zinta का debut, शाहरुख खान, मनीषा कोइराला. Well, a lot of you got it right. The movie that we're talking about is the 1998 classic. Masterpiece of Hindi cinema directed by Mani Ratnam. Dil Se, A.R. Rahman ka music. And Mani Ratnam ne team up kiya tha for this movie with Shekhar Kapoor and Ram Gopal Verma to launch a brand new production house called India Talkies. Dil Se was the first and ultimately the only movie ever produced under this banner. मनीषा कोइराला का रोल, जो मेघना उनका नाम था इस मूवी में, वॉज फर्स्ट ऑफर्ड टू काजोल एंड टिल डेट शी रिग्रेट्स सेइंग नो टू मनी रत्नम्स दिल से बिकॉज उस टाइम पे शी वॉज बिजी शूटिंग फॉर कुछ कुछ होता है. वॉट अ क्लासिक, मतलब क्या गाने, क्या स्टोरी अबाउट 7 स्टेजेस ऑफ लव. शाहरुख खान एज अमर इंट्रोड्यूस्ड मी टू रेडियो. उससे पहले मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि रेडियो क्या होता है बिकॉज हम तो टीवी देखने वाले बच्चे थे. सो व्हेन आई फाइनली सॉ द मूवी मुझे पता चला कि दिस इज ऑल्सो प्रोफेशन एंड ही इज टू वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो. आई थिंक ओवर द वीकेंड वी शुड ऑल रीलिव द 7 स्टेजेस ऑफ लव थ्रू दिस मूवी. दिलकशी, उंस, इश्क, अकीदत, इबादत और जुनून.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: पर प्यार कितना चल देने इसका आइडिया तो मुझे ऑनेस्टली नहीं है आफ्टर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस नॉट सो गुड. फिलहाल यहाँ से जाने का मेरा टाइम है. जाने से पहले प्यार के बारे में नहीं हेल्थ के बारे में आपको ज्ञान दे सकती हूँ बिकॉज दैट्स वन एरिया ऑफ माय लाइफ दैट आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एंड मैं बड़ा फोकस करती हूँ अपनी गुड हेल्थ पे. अगर आजकल आप भी वीक फील करते हो, यू फील वेरी लेथार्जिक, यू फील लो, लाइफ ही ऐसी है, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल है, बहुत सारा फास्ट फूड हम खाते हैं, हर चीज़ फटफट इंस्टेंटली हमें चाहिए होती है, तो स्ट्रेस भी हमें इंस्टेंटली आ जाती है. एंड आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सब फील करना इज़ वेरी वेरी कॉमन. बट ऑनेस्टली यू डोंट हैव टू वरी. ऑल यू नीड टू डू इज टेक डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. ये है 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स. एंड अगर आप शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं देन डेफिनेटली ट्राई देम आउट. बट डू कंसल्ट योर डॉक्टर or do consult your pharmacist before taking any of these drugs. फिलहाल एक चीज़ है जिसकी कंसल्टेशन आपने नहीं करनी है, वो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की. अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट डू इट राइट अवे. इन फैक्ट मंडे से वी हैव गॉट अ बिग सरप्राइज फॉर यू. इफ यू बीन प्लानिंग योर ड्रीम हॉलीडे देन दिस इज इट, मौका मिलेगा. बट फॉर दैट हेड टू आर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम. इट इज, यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल नॉट टॉक टू यू ओवर द वीकेंड. वी कैन पे आई कीप यू कंपनी with the big Bollywood countdowns.

Big surprise for you. If you've been planning your dream holiday, then this is it. Mauka milega. But for that, head to our Instagram page, 106.2 Big FM it is. You can say hi to me, Amansi talking. I'll not talk to you over the weekend. Weekend pe I keep you company with the big Bollywood countdown. So I'll see you tomorrow. Ho gaya mera matlab ghar jane ki jaldi ho rahi hai mujhe. Kyunki aaj Friday hai. Toh mera toh Monday to Friday fix hai na. Monday ko main ye show dekhti hoon. Friday ko main wo show dekhti hoon. I'm a big fan of Pakistani dramas. Toh aaj mere do bahut hi फेवरेट शो आने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ी हड़बड़ी कर रही हूं बट आप हड़बड़ी मत कीजिए एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग एंजॉय योर वीकेंड अप नेक्स्ट सम ब्यूटीफुल म्यूजिक राइट हियर ऑन बिग 106.2 गुड नाइट हैप्पी हैप्पी वीकेंड

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। The Big Binge with Sid. Play दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: The Big Binge with Sid. Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The beat of Bollywood.